0: और ईमानदारी वह रोशनी जो हर अंधेरे रास्ते को उजाला कर देती है। आइए आज हम यह प्रण लें कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मेहनत और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शन बनाएंगे, क्योंकि यही असली दौलत है जो हमें सम्मान, विश्वास और सच्ची सफलता दिलाती है।
1: श्रोताओं, अब कार्यक्रम प्रभाती वंदना में लीजिए सुनिए सबसे पहले मातृ वंदना।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें मिर्च की खेती के संदर्भ में। हमारे द्वीपों की जलवायु मिर्च की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पौष्टिकता की दृष्टि से हरी मिर्च में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि हमने कहा, हमारे इन द्वीपों की गर्म जलवायु मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन शिमला मिर्च की खेती के लिए ठंड की जरूरत होती है। मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो। भूमि की अच्छी तैयारी, 2 से 3 बार जुताई करके उसमें 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिलाकर करनी चाहिए। इसके बाद खेत को समतल कर दें। हमारे द्वीपों में जीवाणु मुरझान यानी बैक्टीरियल विल्ट का रोग मिर्च में लगता है, इसलिए जब भी आप मिर्च की जातियों का चयन करेंगे तो ऐसी किस्मों को चुनें जिनमें कि इस बीमारी के प्रति प्रतिरोध की क्षमता हो। इस तरह की किस्मों में पूसा ज्वाला, पंत C1, उत्कल रागनी, पूसा सदाबहार, फूले साई, BC24, BC28, अर्का लोहित आदि शामिल हैं। जहां तक मिर्च की बुआई का सवाल है, पूरे वर्ष भर मिर्च की खेती हमारे इन द्वीपों में हो सकती है। प्रति हेक्टेयर 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 300x60x15 सेंटीमीटर आकार की नर्सरी बनानी चाहिए। बीजों को एग्रोसान जीएन या थेराम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। नर्सरी में बीजों की बुआई 10 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हुए

0: था 1.5 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बीज डालने के बाद कीटनाशक दवा जैसे फोरेट का हल्का सा छिड़काव कर दें तथा बारीक गोबर की खाद से बीजों को ढक दें। इसके बाद फुहारे से हल्की सिंचाई कर दें। नर्सरी को भारी वर्षा एवं तेज धूप से बचाना चाहिए। नर्सरी में पौधे जब 30 से 35 दिन के हो जाते हैं तब इन्हें निकालकर मुख्य खेत में रोपाई कर देनी चाहिए। मुख्य खेत में जाति के अनुसार पौधों से पौधों की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। जहां तक खाद एवं उर्वरकों का सवाल है, करीब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 890 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें से फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा को 45 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय दे देना चाहिए। चूंकि हमारे इन द्वीपों में अधिक एवं अनियमित बारिश होती है, इसलिए यहां पर हमेशा खरपतवार बढ़ते रहते हैं। प्रारंभ में 2 से 3 उथली निराई गुड़ाई करके खरपतवारों से खेत को मुक्त रखना चाहिए। हमारे द्वीपों में ज्यादातर हरी मिर्च को ताजा उपयोग के लिए उगाते हैं, इसलिए हरी मिर्च का पूरा आकार हो जाने पर रंग बदलने से पहले ही इन्हें तोड़ दिया जाता है। 10 या 15 दिन के अंतराल पर हरे फलों को तोड़ा जा सकता है। अगर अच्छी तरह से वैज्ञानिक विधि से हरी मिर्च उगाई जाए तो 100 क्विंटल हरी मिर्च प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। पौध सुरक्षा पर भी विशेष तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर जीवाणु मुरझान रोग से बचाव के उपाय करने चाहिए। कुछ एक कीड़ों का प्रकोप भी मिर्च में होता है, जिसके प्रति सजग रहकर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीट नियंत्रण के उपाय आप जरूर करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय

0: सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स, एआई और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties, based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. The group of 7 G7 nations have agreed to release 100 million barrels of oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. Mr. Trump said that European countries had agreed to release large quantities of diesel from their stocks and that the process would begin immediately. The announcement followed an overnight conversation between Trump and French President Emmanuel Macron. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the Global Horticulture Hub will strengthen the horticulture sector and create better opportunities for farmers in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Ms. Sitharaman laid the foundation stone for the Rayalaseema

एमवी भारत सीमा आज रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा और डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा कल दोपहर 2 बजे। एमवी कैंबल बे कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा एवं लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम लौटेगा कल ही रात 9 बजे। एमवी कालीघाट 5 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार जाएगा तथा कार्निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 6 तारीख को शाम 4 बजे। एमवी सेंटिनल 8 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचा

ननकौरी, माँ कछुआ और आफ्रा बे होते हुए कैमल बे जाएगा एवं कैमल बे से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा 11 तारीख को रात 9 बजे। जलयान नालंदा 6 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैमल बे जाएगा और कैमल बे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 8 तारीख को सवेरे 8 बजे। एम वी रानी जंगा आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी बम्बुका आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी जॉली बॉय आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी स्ट्रेट आइलैंड आज शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा एवं स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम आएगा कल सवेरे 5:30 पर। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। कहते हैं मंजिल से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है वहां तक पहुंचने का सफर, क्योंकि सफर सिर्फ रास्तों पर चलने का नाम नहीं बल्कि उन रास्तों में बिखरी यादों, मुलाकातों, अनुभवों और एहसासों को अपने साथ समेटने का नाम है। कभी कोई सफर हमें अपनों के करीब ले आता है तो कभी खुद से मिलने का अवसर देता है। कभी रास्ते सुहाने होते हैं तो कभी मुश्किलों से भरे, लेकिन हर सफर हमें कुछ नया सिखाता है। तो आइए आज संगीत की सुरीली राहों पर हम भी निकल पड़ते हैं, एक ऐसे ही खूबसूरत सफर पर जहां हर गीत एक पड़ाव होगा, हर धुन एक याद होगी और हर शब्द अपनेपन का एहसास कराएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है इसके रास्ते। दोस्तों सफर का नाम आते ही न जाने मन में कितनी तस्वीरें उभर आती है, कभी किसी अनजान मंजिल की तलाश, कभी अपनों के साथ बिताए खूबसूरत पल, तो कभी छोटी छोटी खुशियाँ। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है, हर मोड़ पर एक नया अनुभव, हर पड़ाव पर एक नई कहानी और हर दिन एक नई उम्मीद। इसीलिए शायद कहा गया है कि मंजिल की चिंता छोड़कर अगर हम रास्तों का आनंद लेना सीख ले तो जिंदगी का हर सफर सुहाना बन जाता है।

0: दोस्तों, जिंदगी का सफर अपने आप में एक खूबसूरत कहानी है। इस सफर में न जाने कितने लोग हमसे मिलते हैं। कुछ पल भर के लिए साथ चलते हैं तो कुछ अनजाने चेहरे कब हमारे अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी एक छोटी सी मुलाकात रिश्ते की शुरुआत बन जाती है तो कभी कोई अनजान इंसान हमारी जिंदगी में ऐसी जगह बना लेता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की हो।
1: ओह।

जिंदगी भी तो एक खूबसूरत सफर ही है, कभी धूप की तरह चमकती हुई, कभी बादलों की तरह ठहरी हुई। सफर की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि मंजिल से ज्यादा याद हमें उन रास्तों की रहती है जहां हमने हंसते हुए कुछ पल बिताए, नई जगहों को देखा और जिंदगी को करीब से महसूस किया। और जब दिल में उमंग हो, कदमों में रफ्तार हो और साथ हो खुशनुमा एहसास, बस दिल यही कहता है चलते रहो, मुस्कुराते रहो और इस खूबसूरत सफर को जीते रहो।

0: तो दोस्तों, इस सुहाने गीत के साथ आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इसी मधुर धुन और दिल को छू लेने वाला एहसास आपके मन में देर तक बसा रहेगा। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी के हर सफर को पूरे उत्साह के साथ जीते रहिए। नमस्कार, सुप्रभात।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 380वीं कड़ी।

माया, मोह, ईर्ष्या आदि के लक्षण बताते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी। जिस प्रकार लकड़ी में घुन लग ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में संतान, संपत्ति और सम्मान पाने की लालसा पैदा होती है। माया की सेना संपूर्ण जगत में व्याप्त है। माया से मुक्ति राम कृपा के बिना नहीं मिल सकती।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरितमानस गान की 380वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार के विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वतन के गीत। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी सवेरे 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर कार्यक्रम देश रागिनी। सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विशेषज्ञ होंगी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा। विषय रहेगा बच्चों में संक्रमण, पहचान और बचाव। सुगम संगीत कार्यक्रम सवेरे 8:30 पर। सवेरे 9:00 फिल्मी गीत। सवेरे 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 9:45 पर फिल्मी गीत। दिन में 10:00 फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कशिश गीत गुंजन आप सुनेंगे। दिन में 11:00 11:30 पर गीत अतीत। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम, जिसमें आप कुछ फिल्मी गीत सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर, जिसमें वन्य जीव प्राणी सप्ताह पर चर्चा सुनेंगे। सुगम संगीत दोपहर 1:10 पर। दोपहर 1:30 पर आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ होगी प्राइमरी चैनल की पहली सभा समाप्त, जबकि FM 100.9 MHz पर 2:30 पर आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे लोकप्रिय गीत। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण। फिल्मी संगीत बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा।

लायम भारतम और इसके अतिरिक्त जनधन योजना पर चर्चा की जाएगी। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में वन्य जीव प्राणी सप्ताह पर चर्चा और कुछ फिल्मी गीत सुनेंगे। शाम 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में सिप्पी घाट निवासी श्रीमती पी पड्डियम्मा से बातचीत का विषय रहेगा गायों का पालन। शाम 6:30 पर कार्यक्रम आमने सामने। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे वीएस आनंद की लिखी झलकी वजन घटाओ, निर्देशक कमल दत्त। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम, जन सूचनाएं शाम 7:15 पर। शाम 7:20 पर फिल्मी गीत दिल ने फिर याद किया। शाम 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है, रोजगार समाचार व गौरव गान रात 8:30 पर। इसके अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्र पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती, रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

फिर याद किया। शाम 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है, रोजगार समाचार व गौरव गान 8:30 पर। इसके अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्र पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती, 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे और अब मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

अभी आप मौसम की जानकारी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः भारतीय विमानचालकेन कैप्टन स्मिथ मछार इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन संवादं कृतवान्। सः चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् अशीत्यधिकैकशतं यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृतविवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमन्त्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्रस्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् सम्पूर्णराष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मिथः साहसेन यथासमयम् उचितनिर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमन्त्री स्मिथस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मिथः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाषसंवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़ा एड्रेस और मेरे को इसे कौन करके

0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रिणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु, आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं।

सबसे पहले आपको मौसम से अवगत करा दें। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 95% और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:08 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:08।

और अब एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिल्ली से श्री विजयपुरम आएगा दिन में 11 बजे तथा यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान संचालित करेगा दिन में 11:40 पर।

श्रोताओं, और अब एक आवश्यक सूचना। सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बच्चों में संक्रमण, बचाव और पहचान, खासतौर पर हैंड फुट माउथ डिजीज और फ्लू इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कॉल करके सीधे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ होंगी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा। हमारे नंबर हैं 03192-232-558, 03192-232-558। समय रहेगा सवेरे 7:30।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:05 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में इस अंतराल के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-2901-701 पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। वन्य जीव सप्ताह के सिलसिले में आज सुबह 7:30 बजे से वन्य जीव जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस आवेदन जमा करने हेतु ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा और नशा मुक्त युवा हेल्थ वॉक के मद्देनज़र कल मरीना पार्क से नेताजी स्टेडियम तक का मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। इस संग्रह में दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़े यादगार वस्तुएं, धार्मिक वस्तुएं, 1 पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ली जाएगी। नीलामी की तिथियों, इसमें शामिल होने की जानकारी और पूरी कैटलॉग के लिए प्रधानमंत्री यादगार वस्तु ई नीलामी पोर्टल pmementos.gov.in देखें। वन्य जीव सप्ताह के सिलसिले में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और द्वीप जैव विविधता पर स्थित EIACP केंद्र वन्य जीव सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, वृक्षारोपण अभियान, वन्य जीव जागरूकता रैलियां और विभिन्न स्कूलों में वन्य जीव संरक्षण पर व्याख्यान सत्र शामिल है। इसी उपलक्ष में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र का द्वीप जैव विविधता पर पर्यावरण सूचना जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम वन्य जीवों से जुड़े संदेशों का प्रसार करने के लिए वन्य जीव जागरूकता रैली का आयोजन कर रहा है। ये रैली आज सुबह 7:30 बजे सेलुलर जेल से आरंभ होकर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में संपन्न होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान खादी उत्पादों पर 20% तक और ग्राम उद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट दी जाएगी। भारत सरकार ने पात्र किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है। योजना को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ लागू की गई हैं। इसी के मद्देनज़र किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर इन लंबित आवश्यकताओं को पूरा कराने का अवसर प्रदान किया है, ताकि लाभार्थियों का एक सटीक और सत्यापित डेटाबेस तैयार किया जा सके। मंत्रालय ने ऐसे सभी पीएम किसान लाभार्थी जिन्होंने अभी तक भूमि विवरण, ईकेवाईसी या बैंक खाते का आधार सीडिंग पूरा नहीं कराया है, उनसे इस विशेष अभियान के दौरान इसे अनिवार्य रूप से पूरा करने की अपील की है। विशेष अभियान समाप्त होने के बाद भी जिन किसानों की अनिवार्य आवश्यकताएं लंबित रहेंगी, उन्हें योजना के तहत निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सभी अनिवार्य सत्यापन पूरे करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी संबंधित जोनल कृषि कार्यालय या नज़दीकी कृषि उप डिपो से संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, पटाखा लाइसेंस और सड़क बंद। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिवाली के दौरान आतिशबाजी और पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन जमा करने हेतु अंडमान एवं निकोबार प्रशासन का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुला रहेगा। इच्छुक व्यक्ति 12 अक्टूबर तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अस्थायी लाइसेंस प्रदान करना निर्धारित लाइसेंसिंग साइट, अग्निशमन सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा। नशा मुक्त युवा हेल्थ वॉक के सुचारू संचालन के लिए कल सवेरे 5:30 बजे से सवेरे 8:30 बजे तक मरीना पार्क गेट, फ्लैग पॉइंट, आरके मिशन, नेताजी स्टेडियम तक का मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने इस दौरान आम जनता से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। राज्य परिवहन सेवा की ओर से आम जनता और पर्यटकों की सुविधा के लिए श्री विजयपुरम से मिडिल स्ट्रेट तक दैनिक AC डीलक्स बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। ये बस सेवा श्री विजयपुरम से सुबह 4 बजे रवाना होती है और लगभग सुबह 7:30 बजे मिडिल स्ट्रेट पहुंचती है। अपनी वापसी यात्रा में ये बस मिडिल स्ट्रेट से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर बाद 3 बजे प्रस्थान करती है। यात्री ATR टिकटिंग के ATS पोर्टल के माध्यम से यात्रा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अग्रिम टिकट बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पर्यटन निदेशालय ने रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप पर्यटन हस्तक्षेप 2026-27 के अंतर्गत युवाओं के लिए 2 विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें भोजन बनाने की कला, उसकी प्रस्तुति और स्वच्छता के अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं ड्रोन इमेजिंग प्रशिक्षण शामिल है। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित

प्रारूप में आवेदन पत्र 5 अक्टूबर शाम 3 बजे तक योजना अनुभाग में जमा कर सकते हैं। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में गणित विषय के द्वितीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम में एक रिक्त पड़ी सीट पर प्रवेश के लिए परामर्श लिया जाएगा। परामर्श आज सुबह 9:30 बजे कॉलेज में रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। निकोबार जिले की जिला कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के अंतर्गत ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के संविदा पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे परका स्थित सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। अंडमान एवं निकोबार क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के साथ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल हल्दर और जी भास्कर ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह के दौरान नेताओं ने सभी के प्रति अपने विचार रख राष्ट्र निर्माण में दिए गए उल्लेखनीय योगदान को याद किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। वन्य जीव सप्ताह के सिलसिले में आज सुबह 7:30 बजे से वन्य जीव जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस आवेदन जमा करने हेतु ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा। और नशा मुक्त युवा हेल्थ वॉक के मद्देनज़र कल मरीना पार्क से नेताजी स्टेडियम तक का मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

श्रोताओं, हमारा देश सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी भावनाओं और हमारे गौरव का नाम है। हमारी मिट्टी से जुड़े यादें, तिरंगे के रंग और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, यही तो देशभक्ति है।

0: श्रोताओं, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर जवानों की याद दिलाते हैं कुछ गीत। यह एहसास कराते हैं कि हमारी आज़ादी और हमारी सुरक्षा के पीछे अनगिनत लोगों का त्याग जुड़ा है।
1: तब जाके कहीं हमने सर पे

श्रोताओं, देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिकों तक सीमित नहीं है। अपने देश के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, दूसरों का सम्मान करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना भी देश प्रेम का ही एक रूप है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: तो श्रोताओं, बच्चों में बदलते मौसम के साथ सर्दी, जुकाम, फ्लू और कई तरह के संक्रमण देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चों में कुछ संक्रमण बहुत तेजी से फैल भी सकते हैं, इसलिए इनके लक्षणों को समय पर पहचानना और सही बचाव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है बच्चों में संक्रमण, पहचान और बचाव। खासतौर पर हम बात करेंगे हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ और फ्लू इन्फेक्शन की। अगर इस विषय पर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 03192-232-558, 03192-232-558। तो इस विषय पर जानकारी लेकर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बच्चों में संक्रमण कितने प्रकार के हो सकते हैं और इनमें सबसे आम संक्रमण कौन से हैं?
1: जी, बच्चों में संक्रमण बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम जीवाणुओं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये सब होते हैं जिनमें कि वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है बच्चों में। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जैसे ईयर, नोज, थ्रोट के इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि खांसी, सर्दी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ, और पेट के इन्फेक्शन यानी कि डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब।
0: जी, तो बच्चों में संक्रमण होने के शुरुआती लक्षणों को माता

0: पिता कैसे पहचान सकते हैं?
1: देखिए, ज़्यादातर बच्चों में जो है, जब इन्फेक्शन होते हैं तो उनका बॉडी, उनका जो डेवलपिंग इम्यून सिस्टम है, वो इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश करता है. तो उस समय बच्चे को फीवर आता है और कई बार बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जिसको हम रिफ्यूज़ल टू फीड बोलते हैं. अभी तक बच्चा खा रहा था ठीक से, लेकिन वो खाना पीना में उसका रुचि कम हो रही है या उसकी एक्टिविटीज़ कम हो रही है. यही सब शुरुआती लक्षण होते हैं इन्फेक्शन के.
0: जी, तो डॉक्टर साहिबा, हमें बताइए कि आजकल बच्चों में फ्लू इन्फेक्शन जो है वो कितना आम हो चुका है और ये कैसे फैलता है?
1: जी, फ्लू इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है. देखिए, ये वैसे तो थ्रू आउट द ईयर हमें देखने में मिलता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ये ज़्यादा होता है. जैसे
0: जी
1: अभी इस समय अक्टूबर नवंबर के सीज़न में फ्लू का एक आउटब्रेक होता है, तो वो नॉर्मली साउथ इंडिया या जहाँ पे रेनी सीज़न वगैरह ज़्यादा देखते हैं उसमें ज़्यादा होता है. और एक फ्लू इन्फेक्शन आता है, वो जनवरी फरवरी के टाइम होता है, वो विंटर्स में या नॉर्थ इंडिया में उस समय वहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है.
0: जी
1: तो इस समय जो है एक आउटब्रेक की तरह होता है और बहुत सारे बच्चे या एडल्ट्स भी उस समय इन्फेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से वो इन्फेक्ट होते जाते हैं.
0: जी फ्लू के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं?
1: देखिए, शुरुआती लक्षण तो आपको नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड है वैसे ही दिखेंगे फ्लू के लक्षण भी, कि बच्चे को सर्दी खांसी हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद उसे बुखार भी आ जाता है. लेकिन फ्लू में जो है बुखार काफ़ी तेज़ आता है, बच्चे को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है, और कई बार हाई फीवर की वजह से उनको फिट्स आ जाते हैं, जिसको हम फिब्राइल कन्वल्शन बोलते हैं, ये भी हो सकता है. और उन्हें सर्दी खांसी के बाद उनको ब्रीदिंग में सांस लेने में तकलीफ़, या फिर उन्हें एडमिट करने की भी नौबत तक आ जाती है.
0: जी, तो लगता है हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, तो उनका प्रश्न ले लेते हैं पहले.
1: जी
0: जी हेलो.
2: नमस्ते बहन जी.
0: जी नमस्ते, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहिबा को अस्सलाम वालेकुम.
1: जी जी, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार
2: जी. मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से जनरल फिजिशियन हूँ. किसी किसी बच्चे को बराबर न्यूट्रलाइजेशन लगाना और निमोनिया, ये सब कैसी चीज है?
1: जी
0: जी, आपका प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया, एक बार दोबारा दोहरा सकते हैं?
2: बराबर निमोनाइजेशन करना और निमोनिया, ये सब कैसा चीज है? इसे कुछ हिफाजत बताया जाए.
1: जी देखिए, बच्चों में नेबुलाइजेशन करना पड़ता है जब उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तब हम देते हैं. लेकिन ऐसे ही नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए हर बच्चे को नेबुलाइज देना वो ठीक नहीं है. और नेबुलाइज के लिए कई दवाइयाँ आती हैं, जिसको सही मात्रा में बच्चे के वज़न के हिसाब से कैलकुलेट करके हम बताते हैं.
0: जी तो जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा.
2: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी. तो शाहिन जी, हम बात कर रहे थे फ्लू इन्फेक्शन के बारे में. तो सामान्य सर्दी जुकाम और फ्लू इन्फेक्शन में माता पिता कैसे अंतर कर सकते हैं?
1: जी वही, जैसे कि मैं बोल रही थी, फ्लू इन्फेक्शन में काफ़ी तेज़ बुखार आता है. नॉर्मल कोल्ड एंड कफ में बच्चों को बहुत ज़्यादा हल्का टेम्परेचर होता है और सर्दी खांसी उन्हें भी होती है, लेकिन बच्चे एक्टिव रहते हैं. और फ्लू इन्फेक्शन में बच्चे लिथार्जिक यानी कि डल हो जाते हैं, काफ़ी खाना पीना छोड़ देते हैं. कई बच्चे जो है सिर्फ लेटे ही रहते हैं, जितनी जैसे हम देखते हैं जो टॉडलर एज ग्रुप है ना, छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे वैसे काफ़ी एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हैं वो. लेकिन अगर उनको इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो वो काफ़ी डल हो जाते हैं और दिन भर सोते ही रहते हैं.
0: अच्छा.
1: वो सिर्फ बेड पे ही रहना पसंद करते हैं और उनमें इरिटेबिलिटी हो जाती है, खाना पीना वो छोड़ देते हैं, और कई बार उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी होती है, और नहीं खाने पीने की वजह से वो डिहाइड्रेशन में भी जा सकते हैं.
0: तो अगर बच्चा डिहाइड्रेट हो जाए तो क्या करना चाहिए माता पिता को?
1: देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि नॉर्मली हम सभी पेशेंट्स को बताते हैं कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी जो एपेटाइट है, उनका भूख है, वो काफ़ी कम हो जाता है. और ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन में ये बहुत आम बात है कि बच्चों का भूख कम हो जाए. तो हमें उसके लिए घबराना नहीं है, हम फिर भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते रहें पौष्टिक चीज़ें, लेकिन हमें बच्चे के हाइड्रेशन का ध्यान रखना है. जैसे कि उन्हें तरल पदार्थ देते रहना है, आपको नॉर्मल पानी देना है, ORS देना है, या घर में बना हुआ कोई फ्रेश फ्रूट जूस है इस तरह से आप दे सकते हो, सूप पिला सकते हो. तो उनको लिक्विड चीज़ें जो हैं, तरल पदार्थ जिसे बोलेंगे, वो आपको बार बार देना है, ताकि बच्चा डिहाइड्रेट नहीं हो.
0: जी.

0: तो डॉक्टर साहब, हमारे दूसरे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी, बताइए अपना प्रश्न बताइए।
1: हाँ जी मैडम जी, आपका शुभ नाम क्या है?
0: दीपिका।
1: दीपिका जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा,
0: नमस्कार।
1: छोटे बच्चों को जब दस्त लग जाते हैं, दो तरह के बच्चों को देखा गया है कि एक को तो येलो लेटिन हो रही है, एक बच्चे को ग्रीन कलर की हो रही है। क्या ये माँ अपना जो बच्चे को दूध दे रही है, डब्बे वाला दूध दे रही है जो ग्रीन कर रहा है, और माँ जो मदर अपनी फीडिंग करा रही है वो येलो कर रहा है, ये दोनों चीजें सही बात है क्या, ये गलत है? दूसरा बात ये पूछूंगा, बच्चों को कई बार ये देखा गया है कि जो इनको ये बदलते मौसम में ज्यादातर जुकाम ही रहता है, इसके अलावा
0: जी
1: और तो कुछ नहीं देखा जाता है। लक्षण तो यही है कि जुकाम में नाक बहती रहती है, बहती ही रहती है। तो उसके लिए बच्चों को हम ऐसी क्या, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी है, रात को ठंडी हो जाती है, तो ऐसे
0: जी
1: में हम बच्चों को क्या
0: ऐसे
1: खान पान
0: आम
1: में भी, खान पान
0: जुकाम,
1: में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी क्या हमें? खान पान बच्चे की, छोटे बच्चे हुए, एक तो दूध पीते बच्चे, एक हो गए लगभग 5 साल 6 साल के बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा राय दें। धन्यवाद।
0: जी, पहला सवाल जो आपका था बच्चों के स्टूल को लेकर, कि कलर बच्चों के स्टूल का कभी पीला कलर का होता है और कभी हरा होता है, तो ये दोनों तरह की चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे, वो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, वो बच्चे अक्सर येलो कलर का ही स्टूल पास करते हैं, वो नॉर्मल बात है। लेकिन कई कबार बच्चे जो हैं फर्स्ट 6 मंथ में, कई बच्चे जो हैं बार बार पॉटी करते हैं, और कई बच्चे कई दिनों के बाद भी करते हैं, तो ये दोनों ही सिचुएशन नॉर्मल है। जब बच्चे ज़्यादा बार स्टूल पास करते हैं, तो कई बार देखा गया कि उनका स्टूल ग्रीन कलर का आता है, पर अगर बच्चा एक्टिव है, उसे फीवर नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, अच्छे से दूध पी रहा है, तो वो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। जी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ मेडिसिन या दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कोशिश करें कि बच्चा पैदा होने से लेकर पहले 6 महीने तक उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिर्फ माँ का माँ ही का दूध दूध। दे, और कुछ उसे ना पिलाएं, जैसे कि कोई फॉर्मूला फीड, या फिर उसे घुट्टी वगैरह, या फिर गाय का दूध, या शहद, ये जी सब चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन कॉज करती हैं बच्चे के पेट में, और उससे उन्हें डायरिया हो सकता है, और डायरिया होने से वो डिहाइड्रेशन में भी जा सकते हैं, कई बार उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध में होता है, तो वो कई बार ज़्यादा पॉटी करने के बावजूद भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में ही, और बच्चे उस समय एक्टिव भी रहते हैं। जी और उनका दूसरा प्रश्न ये दूसरा
1: था।
0: प्रश्न ये था उनका कि जुकाम रहती है बच्चों को। देखिए, वो कई बार एलर्जी कोल्ड भी हो सकता है, तब भी हमें ये देखना है कि बच्चा एक्टिव है, उसे फीवर नहीं है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, वो खाना पीना खा रहा है, तो उस जुकाम के लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। हमें उसे थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाने की कोशिश करनी है, और ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे आइसक्रीम वगैरह खाना पसंद करते हैं, या जंक फूड लेना पसंद करते हैं, वो चीज़ें शुरू से ही आप उनको आदत ना डालें। हाँ, लेकिन अगर बच्चे को जुकाम के साथ फीवर भी है या खांसी भी हो रही है, तब आपको जाकर डॉक्टर को चेक करवाना है कि कहीं उसे इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड फ्लू या फिर फ्लू इन्फेक्शन तो नहीं है। जी, तो आपके सवाल का जवाब आपको ठीक तरीके से अगर मिल गया हो, हेलो जी, तो ये कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम अब बात कर रहे थे फ्लू इन्फेक्शन के बारे में। तो ये जो फ्लू इन्फेक्शन है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल जाता है? जी, फ्लू इन्फेक्शन जो है, वही जैसे हम जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे किसी एक इंसान को फ्लू है, फिर वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके अगल बगल जो लोग हैं, तो जी उनके छींकने से, खांसने से, या बात करने से जो है ड्रॉपलेट से वायरस स्प्रेड होता है, और सामने वाले जो आपके बिल्कुल करीब इंसान है, उसमें वो वायरस का संक्रमण हो सकता है। और दूसरा कॉमन चीज़ है कि चीज़ें शेयर करने से, जैसे अब छोटे बच्चे हैं, तो वो जो है एक बच्चे को जुकाम हो रहा है, तो उसी हाथ से वो बच्चा अपनी नोजी साफ कर रहा है, फिर उसी हाथ से वो बच्चे, बच्चों को इतना जी पता बच्चे नहीं होता, शेयर करते तो वो हैं। टॉयज से खेलते हैं, फिर दूसरा बच्चा भी खेलता है, तो ऐसे उसमें वायरस रह जाने के कारण, या कॉमन स्पेसेस हैं, जैसे कॉमन जगह हैं, अगर हम उसे साफ नहीं करें, तो वहाँ पे बार बार वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन छोड़ सकता है, और वही जो है दूसरे पर्सन को मिल सकता है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट

0: और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है।
1: जी, तो बच्चों को जब अगर फ्लू हो जाए तो उनकी देखभाल घर में कैसे कर सकते हैं?
0: जी, घर पे भी आप उनकी देखभाल कर सकते हो। आप उनको जो है, जैसे अगर बुखार है बच्चे को हल्का, तो आप जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब डोज पहले आपको बताया
1: जी
0: हुआ है वो आप दीजिए, और उनको टेपिड स्पॉन्जिंग करिए, जो नॉर्मल पानी से हम बच्चे का शरीर पोंछते हैं, बहुत ठंडा पानी या आइस कोल्ड वाटर नहीं लेना है, आप
1: नॉर्मल
0: उसे
1: वाटर।
0: स्पॉन्ज करिए नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से। अगर
1: जी
0: बहुत ठंड है किसी जगह पर तो आप ल्यूकवॉर्म वाटर भी यूज़ कर सकते हो बच्चे का बॉडी स्पॉन्ज करने के लिए। और बच्चे को वेल हाइड्रेट रखें, उनको बार बार तरल पदार्थ दें, क्योंकि खाने पीना बच्चा कम कर देता है, और उनको गुनगुनी चीज़ों का सेवन कराएं, जैसे कि उनको जो भी पानी है गुनगुना दें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करें। और जितना भी बच्चा खाता है, सपोज़ वो 50% ही खाता है बीमार होने पे, तो भी आप उनको हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें दें,
1: जी जितना भी दें अच्छा
0: जितना भी
1: न्यूट्रिशियस खाना
0: दें।
1: दें।
0: हाँ
1: जी तो ये तो बात रही फ्लू इन्फेक्शन की, अब हम बात करते हैं हैंड फुट और माउथ डिजीज़ की। ये
0: जी
1: बीमारी क्या है और ये बच्चों में क्यों होती है?
0: जी जी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसको आम भाषा में हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ कहा जाता है, बट ये वायरस से होता है। इसमें दो तीन तरह के वायरस हैं, जैसे कॉक्सैकी वायरस और एंट्रो वायरस हैं। ये वायरसेस जो हैं, ये एक ऐसा डिजीज़ करते हैं बच्चों में जिनमें कि उनके मुँह के अंदर, उनके बॉडी में, उनके हाथ पैर में पेनफुल ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं। मुँह के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं और बॉडी में पेनफुल ब्लिस्टर्स आते हैं। तो ज़्यादातर हमने देखा उनके हथेली में और पैरों के तलवों पे और उनके एल्बोज पे, नी पे और उनके प्राइवेट पार्ट्स पे
1: जी
0: वो ब्लिस्टर्स अपीयर हो जाते हैं, वो काफ़ी पेनफुल रहते हैं। साथ में बच्चे को थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होता है, बहुत हाई फीवर इसमें नहीं होता, लेकिन बच्चे थोड़े इरिटेट रहते हैं रैशेज की वजह से,
1: जी जी
0: ओरल अल्सर्स की वजह से, वो खाना नहीं खा पाते या पानी नहीं पी पाते हैं, तो उसमें भी बच्चे डिहाइड्रेट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये माइल्डली देखा गया है और बच्चे ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जाते हैं।
1: जी तो शाहिन जी, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के माउथ में जो है अल्सर हो जाते हैं, तो क्या
0: जी
1: इस कारण से बच्चे खाना पीना छोड़ सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल,
1: जी तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते ऐसी स्थिति में, वो
0: हाँ वो खाना चाहते हैं लेकिन वो खा
1: खा
0: नहीं
1: नहीं
0: पाते,
1: पाते।
0: क्योंकि उनके मुंह में बहुत दर्द होता है, मुंह खोलते नहीं है कई बच्चे, तो उस केसेस में हम उनको यही बताते हैं कि आप जो है उन्हें धीरे धीरे करके या तो स्पून से पिलाएं, क्योंकि बच्चा सक नहीं कर पाता। जैसे जो बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो वो सकिंग नहीं कर पाता, उसको काफ़ी पेन होता है, तो उसे आप स्पून से पिला सकते हो,
1: जी
0: और तरल पदार्थ दे, फ्रूट्स वगैरह आप दे सकते हो, और गर्म चीज़ें अवॉइड करें
1: जी
0: देना।
1: तो शाइन जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए इनका प्रश्न ले लेते हैं। जी हेलो।
2: हेलो,
1: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं संतोष कर्माकर बोल रहा हूँ, प्रेम नगर से बोल रहा हूँ, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन।
1: जी बताइए अपना प्रश्न।
2: प्रश्न ये है कि बच्चे और एल्डर दोनों का डिफरेंस कैसा, हम लोग उसको प्रिवेंशन करेंगे? जो फ्लू चल रहा है जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन काफी तकलीफदायक चल रहा है, ये तो आप समझा रहे थे तो मैं
0: जी
2: सुन रहा था,
1: जी
2: और आप हमारे डिपार्टमेंट के, आपका डिपार्टमेंट ये बहुत अच्छा कर रहा है,
1: जी
2: मिस्टर अभिजीत डॉक्टर अभिजीत से भी मेरा कंसल्ट होते रहता है, तो
1: जी
2: सब डिटेल बताइए, दैट इज मोर देन इनफ।
1: बच्चों में और बड़ों में जो ये
0: देखिए, फ्लू
1: फ्लू चल
0: इन्फेक्शन की
1: रहा
0: अगर हम बात करें तो फ्लू एक थोड़ा तकलीफदायक ही बीमारी होती है, कॉमन कोल्ड से ये थोड़ा अलग है, और ज़्यादातर संक्रमण छोटे बच्चों में बिलो 5 ईयर या ज़्यादातर बिलो 2 ईयर, और एडल्ट 65 ईयर्स एंड अबव में ज़्यादा इसका इन्फेक्शन देखा गया, क्योंकि इस इन दोनों एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की। इसके अलावा अगर आप एडल्ट्स की बात करें तो जिन एडल्ट्स को जैसे हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, मोटापा ज़्यादा है, इन लोगों पे फ्लू के इन्फेक्शन का असर ज़्यादा देखा गया है। और प्रिवेंशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आप भीड़ वाली जगहों पे जब फ्लू का स्प्रेड हो रहा है तो उस समय जाना अवॉइड करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, और फ्लू का एक वैक्सीन भी आता है जो ईयरली अपडेट होता है, ठीक है। तो जैसे फ्लू वायरस है वो हर सीज़न पे चेंज होकर आता है, जो हमारा प्रीवियस वैक्सीन है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो इस जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, जो छोटे बच्चे
1: छोटे
0: हैं और जो एडल्ट हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको आप एवरी ईयर फ्लू शॉट लगाएं, जिससे कि काफ़ी हद तक हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट हो सकता है, मतलब माइल्ड इन्फेक्शन हो करके फ्लू ख़त्म हो सकता है, सीवियर नहीं होता है अगर उन्हें वैक्सीन लगा है तो।

0: जी, तो इसका वैक्सीन दिया जा सकता है
1: जी
0: जी। तो चलिए, अब कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों में संक्रमण पहचान और बचाव। खासतौर पर हम बात कर रहे हैं हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ और फ्लू इन्फेक्शन की। आप भी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 0319223255। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन कौरा। तो डॉक्टर साहिबा, हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम हैंड फुट और माउथ डिजीज़ की।
1: जी
0: तो ये क्या ये डिजीज़ भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलती है?
1: जी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है, हालांकि इतना सीवियर नहीं है, लेकिन ये हाईली कंटेजियस है। हाईली कंटेजियस यानी कि ये बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। अगर एक बच्चे को हुआ है तो उसके साथ और जो बच्चे हों उनको हो जाता है तुरंत, एक दो दिन के अंदर ही। और केवल ये नहीं कि बच्चों से बच्चों में स्प्रेड होता है, एडल्ट्स में इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन एडल्ट्स भी वायरस, जैसे बड़े लोग हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं या कोई भी है, वो वायरस कैरी कर सकते हैं और उनसे भी बच्चों को हो सकता है।
0: तो बड़ों में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं
1: नहीं,
0: तो
1: ये इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर बच्चों में ही देखा गया है, वो भी छोटे बच्चों में देखा गया है, लेकिन इस साल हमने देखा कि बहुत वाइड स्प्रेड हुआ ये इन्फेक्शन, और बड़े बच्चों में भी हमने देखा, जैसे कि 10, 12, 14, 15 साल के बच्चों में भी इस बार हमने देखा था इस साल।
0: जी
1: वैसे
0: जी
1: ये एवरी ईयर हम देखते हैं इस सीज़न में, लेकिन ये स्प्रेड इस साल बहुत होने के कारण बड़े बच्चों में भी इसके सिम्टम आए, लेकिन एडल्ट्स में इसके सिम्टम्स नहीं
0: नहीं
1: होते हैं।
0: होते
1: ये
0: हैं,
1: बच्चों में स्प्रेड होता है लेकिन बच्चे कैरी करते
0: कैरी
1: हैं,
0: करते
1: सॉरी, एडल्ट्स जो है कैरी करते हैं वायरस, और वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बचाव के लिए आपको जो है फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश
0: हैंड
1: करना है। जैसे आपके एक बच्चे को हुआ है, आप उसका हाई केयर कर रहे हो, उसके डायपर वगैरह चेंज कर रहे हो, तो उसके बाद आपको हैंड वॉश करके दूसरे बच्चे को हैंडल करना है।
0: जी। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को स्कूल या डे केयर तो नहीं भेजना चाहिए
1: जी हाँ, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए,
0: ताकि
1: क्योंकि ये
0: दूसरे बच्चे
1: बहुत
0: संक्रमित।
1: फास्ट स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड को रोकने के लिए सभी को ये जानना ज़रूरी है कि जो है जिस भी बच्चे को हो जाए ये सिम्टम, तो आप उनको घर पे रखिए और उनके घर पे अच्छे से देखभाल करिए, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है एक्स्ट्रा केयर की
0: जी
1: उस समय, और उनको स्कूल या डे केयर ना भेजें ताकि उससे और बच्चों को भी ना फैले।
0: तो मतलब इस डिजीज़ में, हैंड फुट माउथ डिजीज़ जो है, इसमें किस तरह की चीज़ें बच्चों को खाने के लिए दी जा सकती हैं?
1: देखिए, नॉर्मल खाना देना है जो नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि उनके जो माउथ में अल्सर्स आते हैं उसकी वजह से बच्चे जो है स्पाइसी फूड या फिर एसिडिक या जैसा बहुत ऑयली फूड है, ये सब तो बच्चे नहीं ले पाएंगे, और बहुत हार्ड चीज़ें भी वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके लिए च्यू करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: जी
1: तो आप
0: जी
1: उनको जैसे सेमी सॉलिड फूड है, खिचड़ी है, दलिया है, सूप्स हैं, कोकोनट वाटर है, फ्रूट जूसेस है घर में बनाकर है, या फिर मिल्क शेक भी आप बना के दे सकते हो जो बच्चों को थोड़ा टेस्टी भी
0: पसंद भी
1: लगे।
0: होता है
1: तो
0: जी।
1: ये ऐसी चीज़ें देनी है कि उनको न्यूट्रिशन भी मिले वो 3-4 दिन, और ये है कि बच्चा बिल्कुल भी कुछ खाने से वंचित ना रहे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो कुछ लेता रहे।
0: जी। तो इन संक्रमणों के दौरान माता पिता को किन गलतियों से बचना चाहिए?
1: जी, पहला तो यही है कि ज़्यादातर पेरेंट्स का कंसर्न यही होता है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा है ना,
0: जी
1: तो मैं ये हमेशा अपने ओपीडी में भी यही बताती हूँ कि बीमार जब बच्चे होते हैं तो उनके एपेटाइट काफ़ी कम हो जाती है, कई बार तो 50% तक उनका एपेटाइट डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चा थोड़ा कम खा रहा है तो आप बार बार उसे दें, जैसे स्मॉल मील्स दें और फ्रीक्वेंटली दें। एक दिन में नॉर्मली बच्चा 3 बार खाता था पहले, तो आप उसे 5 या 6 बार दें थोड़ा थोड़ा करके, और उसको बार बार पानी पिलाएं। कोकोनट वाटर है तो वो आप पिला सकते हो, और जैसे मैंने बोला फ्रूट जूसेस भी पिला सकते हैं। वैसे तो फ्रूट्स खिलाना बेटर होता है क्योंकि उसमें फाइबर भी मिलता है, लेकिन अगर बच्चा चबा कर नहीं खा पा रहा है तो उन कुछ दिनों के लिए आप जो है उनको घर में
0: जूस
1: बना
0: दे
1: हुआ
0: सकते
1: फ्रेश
0: हैं
1: जूस दे सकते हो।
0: जी। तो चलिए, हमारे दूसरे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो
5: हेलो,
0: जी, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है?

0: मॉर्निंग मैम, मैं रक्षिता बोल रही हूँ गारखेड़ा से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
0: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग
0: मुझे आपसे पूछना है मैम, अगर जो बच्चे को जो छोटा में बुखार के बात है ना, तो उनको फिक्स आता है कोई भी बच्चे को
2: जी,
0: तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं, सभी 18 उम्र हो गया है बच्चे का, तो उनको क्या अभी भी वो फिक्स आएगा?
2: नहीं देखिए, जो फिट्स बच्चों को छोटे में आते हैं और सिर्फ वो फीवर के दौरान आते हैं, बाकी कभी नहीं आते, उसको हम नॉर्मली फिब्राइल सीजर्स बोलते हैं। वो फिट्स ऐसे बाद में नहीं आते हैं। बच्चा जो छोटा होता है ना, तो उनका ब्रेन थोड़ा इमेच्योर होता है और ब्रेन के सर्किट्स ऐसे होते हैं कि हाई फीवर की वजह से फिट्स ट्रिगर हो जाता है। वो बिलो 5 ईयर, 5 साल तक के बच्चों में देखा गया है, उसके बाद वो फिट्स नहीं आते हैं। तो आपको उस समय प्रिकॉशन रखना है कि उसका फीवर अच्छे से आप उतारने की कोशिश करें, जैसे स्पॉन्जिंग करके और बुखार की दवाई देकर। लेकिन अगर किसी बच्चे को बड़े होकर भी फिट्स आते हैं, तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी और कारण से हो सकता है।
0: क्योंकि मेरे दीदी के बेटे को

0: बच्चों में देखा गया है, उसके बाद वो फिट्स नहीं आते हैं। तो आपको उस समय प्रिकॉशन रखना है कि उसका फीवर अच्छे से आप उतारने की कोशिश करें, जैसे स्पॉन्जिंग करके और बुखार की दवाई देकर। लेकिन अगर किसी बच्चे को बड़े होकर भी फिट्स आते हैं तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी और कारण से हो सकता है।
1: क्योंकि मेरे दीदी के बेटे को छोटा टाइम पर आए थे, एक दफा ही आए थे मैम
0: जी।
1: तो उसके बाद में उनको अभी जब वो टेंथ में गए तो उस टाइम से उनको हमेशा मतलब हर एक महीना में फिट्स आ जाते हैं, गिर जाते हैं। वो फिट्स है कि क्या है? तो लेकिन मेडिकल में बोल रहे हैं कि बच्चे को फिट्स है करके। और मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, अच्छा फिट्स में मुँह से फेना आना आता है कि नहीं? उनको तो ऐसा मुँह से कुछ मतलब आता नहीं है, बस अचानक से वो गिर जाते हैं।
0: अच्छा जी, ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि फिट्स में बच्चों को या बड़ों जिनको भी होता है उनके मुंह से फेना आ जाता है, हाथ पैर हिलने की तरह होते हैं और आंखें ऊपर चली जाती हैं। एग्जैक्ट फिट्स तो यही होता है, लेकिन कई बार एक कुछ अलग तरह के फिट्स होते हैं, जैसे एब्सेंस सीजर वगैरह, जिसमें कि इस तरह के सिम्टम नहीं होते लेकिन बस उनके बॉडी लूज हो जाती है और वो गिर जाते हैं। तो फिट्स के लिए डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईजी है, सीटी स्कैन है या एमआरआई स्कैन है, पेशेंट की सिम्टम्स के हिसाब से। तो वो उनको करा लेना चाहिए प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए, ताकि अगर उसे वाकई में फिट्स हैं तो उसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो शुरू किया जा सके। थैंक यू
2: जी। तो चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से अंतराल का।
3: दुर्गा पूजा को मनाइए गोइंकास के साथ।
4: मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर और साड़ियों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन
3: गोइंकास के अबरीन बाजार, भाटू बस्ती, बम्बू फ्लैट और डिग्लीपुर शोरूम में आइए और आकर्षक ऑफर्स पाइए।
4: जीन्स केवल 499 रुपए से शुरू,
3: शर्ट 490 रुपए,
4: क्रॉप टॉप और टी शर्ट 199 रुपए
3: और कुर्ती सिर्फ 190 रुपए से शुरू।
4: सूट पीसेस, वेस्टर्न टॉप्स, कढ़ाईदार कुर्ती,
3: रेडीमेड सूट, ब्रांडेड शर्ट, टी शर्ट के नए कलेक्शन के लिए
4: अपने पूरे परिवार के साथ आइए
3: गोइंकास। दादाजी, आपकी सेहत कैसी है?
5: बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 65 साल का हूँ लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ। संतुलित आहार खाता हूँ, अच्छी नींद लेता हूँ और रोज थोड़ा शारीरिक गतिविधि और योग करता हूँ।
3: वाह, बहुत बढ़िया। और समय पर दवाइयाँ लेते हैं?
5: हाँ हाँ, समय पर दवाई लेता हूँ और नियमित स्वास्थ्य जाँच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी जाता हूँ। साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है।
3: बहुत अच्छा दादाजी। अंडमान और निकोबार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: जी, तो अंतराल के बाद हम कार्यक्रम को अब जारी रखते हैं और डॉक्टर साहिबा से जान लेते हैं कि माता पिता के लिए आपका सबसे ज़रूरी संदेश क्या होगा ताकि वे बच्चों में संक्रमण को समय पर पहचान सकें और उसे फैलने से रोक सकें।
0: जी, जैसा कि देखा गया ये सीज़न अभी थोड़ा संक्रमण वाला ही है, इन सीज़न में बच्चों को अलग अलग तरह की बीमारियां देखी गई है। तो आप हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बच्चों को एक बैलेंस और न्यूट्रिएंट डाइट दें जिसमें कि हर चीज़ उनके डाइट में इंक्लूड होना चाहिए, है ना। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कैसे दी, हम इम्यूनिटी के लिए क्या दें? तो इम्यूनिटी के लिए देखिए ऐसे कुछ नहीं होता, इम्यूनिटी बच्चों में एक डेवलपिंग प्रोसेस है, तो वो धीरे धीरे उनकी बॉडी इम्यून होती है चीज़ों के लिए। उस इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए हमें बैलेंस्ड आहार देना है जिसमें कि सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स आप डाइट में बच्चे की इंक्लूड करें। जंक फूड से बच्चों को दूर रखें क्योंकि आजकल बहुत कुछ बच्चों का एक्सपोजर है और बहुत कुछ अवेलेबल है बाहर, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। पर पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके आप बच्चों को जंक फूड ना दिखाएं ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो और उससे होने वाली बीमारियां से बच्चे बचेंगे। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो जो भी बीमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है वो सबके लिए आप बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, जो भी उनका शेड्यूल है उस हिसाब से, तो उससे भी जो है सीवियर इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।
2: जी, तो जैसा कि आपने कहा कि जंक फूड बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, तो जंक फूड तो वैसा ही है, बच्चे खुद जाकर तो खरीद नहीं सकते, माता पिता अगर उसे लाए ना तो बच्चे खाएंगे नहीं।
0: जी
2: जी, तो डॉक्टर शाहीन कौरा जी, आपने हमें बेहद उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपका आकाशवाणी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया
2: जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपिका, तकनीकी सहयोग दिया टंडा पानी और हिमांजलि आहूजा ने, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहुद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति

0: और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमरीका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3,00,000 लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात में कई सामाजिक मुद्दों

0: को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जनभागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
1: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
2: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
1: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मित मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिन्दुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मित, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आपने गजलें सुनी कविता पौडवाल, जसवंत सिंह, मिताली सिंह, भूपेंद्र सिंह और अशोक खोसला की आवाज़ में। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीत।

0: सीमा, सीमा
1: उठो।
2: क्या हुआ?
1: चेकअप के लिए जाना है ना।
2: सोने दो ना।
1: उठो।
2: अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा।
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
4: समय का मोल
0: HIV पे कंट्रोल।
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
5: श्रोताओं, अंतराल के बाद अब सुनिए फिल्मी गीत, फिल्म दिल तो पागल।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: फसा अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय

मेरे के 9:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
1: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
3: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है। हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फोन हमेशा इम्पोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं। तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक

0: इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ, चाहे आप वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से, जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रांग करें। तो चाहे आप डिजाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिजाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के, जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में, यूपी फॉर एग्जाम्पल, लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगते हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है, तो ये मेक इन इंडिया की खास बात ये रही है, इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहां पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीजों को बना रहे हैं।
1: इनफैक्ट मेक इन इंडिया की जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिजाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सके। डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
2: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता, अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको, वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले, हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा, और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहाँ बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक ना केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज, तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है, और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग गिन के अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है, और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था, आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है, और वो युवा आज जो, जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना, तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं, जो युवा आते हैं वो मुझसे पूछते हैं,

0: है कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है, कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं, और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए तो बड़ा आसान है। मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी, और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर्स से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत है, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको निहारिका आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी, और पहचान भी इसकी तभी बनेगी क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है, और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
2: ये बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमईज का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं, और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम, एक चलिए मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है, लोग हैं, इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता है कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में, उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल, एक पोटैटो है, अगर आप आलू का, अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा, बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरफ माइग्रेट ना करना पड़े, वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के, रोड्स को बना के, और जो ट्रेन से और शिपिंग, सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर

0: कि देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल, कम्पेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है। तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें।
2: देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है। एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको दो शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है। और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई के ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें। तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है, और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखी ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% में काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है। आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल, और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के जमाने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है? आज के जमाने में सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों हैं, और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
0: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन। क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट

0: ये हुआ है कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी ले लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, चाहे मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है। तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना रखा है। तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है
1: जी।
0: इस युग में आज हम जी रहे हैं। तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए, और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसकी अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है, जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज देश हमारे जुड़ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफ़ी साइंस है, मैथ्स है, एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे। तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के बराबर का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है, और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि TSMC जो ताइवान की कंपनी है जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है। उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट हैं, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर। अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए। तो मुझे प्रधानमंत्री जी का बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें, हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी।

0: बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए
1: जी
0: हमें इस चर्चा में।
1: जी
0: जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे,
1: जी
0: लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है
1: बिल्कुल ठीक
0: इसमें?
1: कहा आपने। मैंने आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और
0: बिल्कुल
1: हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहां तो वोकल फॉर लोकल की, ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में, मशीन गन्स में लगते थे, वो भी बाहर से आया करते थे। और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेकर आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है,
0: जी
1: उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे, उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था, आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है, तो डिफेंस मैं दूसरे नंबर पर डालूंगा। जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही हैं, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका, ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
0: बिल्कुल
2: देखिए, डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऐसे कई आप देश आज, चाहे आप चांद में देख लीजिए, वहाँ जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिससे कि डिफेंस में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम वो हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाइल्स हैं ये सब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
0: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें, या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन।
1: जी।
0: अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है,
1: जी।
0: लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
2: देखिए, वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहां पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती हैं, वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफर करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
0: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे
1: मुझे
0: में?
1: लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे, और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है, वहां जाके जब ट्रेन्स में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन्स हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स भारत में ऑपरेशनल हैं, और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है, और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कंफर्ट आया है, क्लेनलीनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे, उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका, मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल, एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के एमएसएमई के बारे में पूछना

0: चाहूंगी. हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एमएसएमईज की भी बहुत अहम भूमिका है.
1: बिल्कुल, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड एमएसएमईज हुआ करते थे करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड एमएसएमईज हमारे देश में हैं.
0: जी
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक एमएसएमईज को पूरा उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से एमएसएमईज को सपोर्ट किया उसके बाद जो एमएसएमईज की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज हैं लेकिन उसमें एमएसएमईज की बहुत बड़ी भूमिका है. जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं तो हमारे देश के एमएसएमईज उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है.
0: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें.
1: बिल्कुल.
0: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
2: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है. हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे. और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, तो मैं इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं. मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग जब भारत में जीडीपी में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है. और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स, जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां दूं. बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं. बदलाव की बात करें निहारिका, तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे पर मुख्य मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
0: जी किया. बिल्कुल बिल्कुल.
1: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत. जो नया भारत आज भारत की पहचान है, भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है. और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं, और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रेटजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम. क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की. और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है. ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है.
0: बिल्कुल, यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है. इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए.
2: शुक्रिया.
1: थैंक यू.
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक. इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीत। कार्यक्रम में पहला गीत अदनान सामी की आवाज में फिल्म साथिया से।

उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म बेवफा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में फिल्म दिल से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम का पहला गीत आन फिल्म से स्वर दिया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। बोल समीर के हैं व धुन बनाई है अनु मलिक ने।

फैज़ अनवर का लिखा एवं आदेश श्रीवास्तव का संगीतबद्ध किया हुआ, आइए सुनते हैं बड़े दिलवाले फिल्म का गाना। स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।

आइए अब सुनते हैं मुस्कान फिल्म का गाना, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीतकार समीर व संगीतकार है निखिल विनय।

श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला की आवाजों में आइए सुनते हैं शीशा फिल्म का गीत। गीतकार निदा फाजली व संगीतकार हैं सेन ब्रदर्स।

0: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार के विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्में गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
1: आइए सुनते हैं अरमान फिल्म का गाना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार जावेद अख्तर व संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार के विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में ये था आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म का गाना। शब्दकार इब्राहिम अर्श व संगीतकार थे राजेश रोशन। कार्यक्रम का अगला गीत बस इतना सा ख्वाब है फिल्म से, आवाजें हैं अलका याग्निक और शान की, बोल गोल्डी बहल के हैं व संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत दिल चाहता है फिल्म से, स्वर दिया है शंकर महादेवन, शान और केके ने, बोल फरहान अख्तर के हैं व धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने धड़कन फिल्म से लिया था। स्वर दिया था उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू ने। शब्दकार समीर व संगीतकार थे नदीम श्रवण।
1: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेरबदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्में गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
0: श्रोताओं, इस समय आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं जुदाई फिल्म का गाना, हरिहरन, अलका याग्निक और जसविंदर नरूला की आवाजों में। बोल समीर के हैं व धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में ये था दीवाना फिल्म का गाना, जिसे लिखा था समीर ने व संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आइए सुनते हैं बीवी नंबर 1 फिल्म का गाना। बोल समीर के हैं व धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ों में ये था बीवी नंबर वन फिल्म का गाना, जिसे लिखा था समीर ने व संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।

आकाशवाणी का यशरी विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने तकदीर फिल्म से लिया था, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वह स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने। अब आपको सुनवाते हैं तलाश फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल मजरू के हैं, वह धुन बनाई है SD बर्मन ने।

प्रेम लता और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आइए सुनते हैं बड़ी बहन फिल्म का गाना। गीत रचना राजेंद्र के हैं व धुन बनाई है हुस्न लाल भगतराम ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेरबदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्में गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
0: श्रोताओं, इस समय आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं किस्मत फिल्म का गाना आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में। गीतकार SH बिहारी व संगीतकार हैं OP नैयर।

राजेंद्र किशन का लिखा एवं एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, आइए सुनते हैं बहार फिल्म का गाना। स्वर दिया है शमशाद बेगम ने।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दिल ही दिल में फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और विजेता पंडित की आवाज़ों में, गीतकार ऐश कमल के, व धुन बनाई है मनधीर जतीन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർസിൽ. ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब बिर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक

0: वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमय जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan Kautilya Economic Conclave in New Delhi today. The Vice President said democracy and development can advance together with consensus, inclusion and responsive policy making, providing the foundation for sustainable growth. He stressed that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047.
1: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh, from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Mr. Shah said that Navpreet Singh used to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship.

लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं।

0: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगली आवाज है तलत महमूद की।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे अनूप जलोटा, तलत महमूद और शारदा।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं अजहर फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये दोस्त यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से।

अगली फरमाइश आई है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई हीरामन और प्रणय हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं भुज फिल्म का गीत। इस गीत के फरमाइश करता है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब और लड्डू।

0: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
1: श्रोताओं, इस समय आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे हैं। गाडगे नगर महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, शैलेंद्र, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता, हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है बगावत फिल्म के इस गीत की।

श्रोताओं, अभी आपने राबता फिल्म का ये गीत सुना। इस गीत को सुनने के शौकीन थे पलेश टीकमगढ़ एमपी से, ब्रजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष। श्रोताओं, हम आपको बता दें, कल 4 अक्टूबर से आप हर रविवार एक नया धारावाहिक सुनेंगे सुबह 7:30 पर।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत 20 साल बाद फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं पश्चिम सिंहभूम शाही भाषा झारखंड से शिवा गो प्रेम संगीता लिपि और दीपाली।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: in Hingoli district. According to preliminary information, the first tremor measuring 3.3 magnitude was recorded at around 7:47 a.m. A stronger tremor of 4.5 magnitude followed at 9:43 a.m., after which a series of smaller tremors were reported. In Nepal, at least 6 people were killed and 10 others injured today when a bus overturned in Gandaki province. Police said the Kathmandu-bound bus had 18 passengers on board, including the driver, when it overturned in the Daune area of Nawalparasi district. The injured passengers were taken to provincial hospital for medical treatment. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD has also said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, most parts of Gujarat and Madhya Pradesh. In Asian Games, India won the gold in men's cricket, defeating arch-rivals Pakistan in the T20 cricket final at Nishin, Japan today. India won the final by 19 runs, chasing India's target of 212 runs. Pakistan managed to score only 196 for 6 in their stipulated 20 overs. Earlier, India posted 211 for 6 after opting to bat first. Opener Abhishek Sharma scored 61 of 28 balls, while Tilak Varma remained unbeaten on 51 of 22 balls. Shivam Dubey added 27 of 14 balls to take India past the 200-run mark. With this, India has secured its 81st Asian Games medal, including 19th gold to the tally. India has also won 26 silver medals and 36 bronze medals already. In men's cricket, India were 3 for 1 in 2.3 overs against West Indies in the third and final ODI in Mulanpur, New Chandigarh, when reports last came in. In men's hockey, defending champions India will take on Malaysia, with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold and an LA 2028 Olympics quota. The match will start at 3:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait flag tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

0: टीम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे और वो सब छोटे छोटे देश थे अभी था, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत साढ़े चार वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष

0: 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPC में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
3: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy, from there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाईपास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म

0: संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: Non-stop music!

दोस्तों, नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम का ये सफर आज आप तय कर रहे हैं शबाना के साथ। आपको बता दें, गीतों से भरे इस सफर का आप लुत्फ उठा पाएंगे अब से लेकर दोपहर 3:30 तक। तो चलिए, देर किस बात की है, निकल पड़ते हैं गीतों से भरे इस सुहाने से सफर पर शबाना के साथ।

0: दोस्तों, अभी आप नॉन स्टॉप म्यूजिक के इस कार्यक्रम में ऐतराज क्या यही प्यार है, साजन, राजा हिंदुस्तानी, आशिकी, मन, राजा बाजीगर, कुछ कुछ होता है, 1942 अ लव स्टोरी और दिल मांगे मोर, इन सभी फिल्मों के गीतों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही नॉन स्टॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। समय हुआ है दोपहर के 3:30। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम का पहला गीत सरफरोश फिल्म से। आवाजें हैं कुमार रूप कुमार राठौर और सोनू निगम की। बोल इसरार अंसारी के हैं व धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: 4.38 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इंग रेता का लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्गी निकोबारे प्रोग्राम तहांग। मिनका तलोन ही इंग हराप केकरन अनवहेंगम त हेगोंग ताने अनाय सात बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन नकुद गरजु आई के केन अम इनफे के फिनत न्यो के करन वहे गम फंक्शन एलगम कांतिबाग नलक तकु इतलु अनाय फेनंग मिनिट न हेवर रोंग ते तलाबह डॉक्टर दिनेश शर्मा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अनवहे न रातपुल न इरन तंगम स्टेचू महात्मा गांधी के कारण मैंने प्रेयर तसार इतुम मैंने दिन लगन ही तिक न्यूंगम रामधुन इंद्रे वह तो मैं टीचर्स स्टूडेंट गम एजुकेशन डिपार्टमेंट ये इंद्रे वह मैं आयल मैंने दरोखर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन एनोडोमन बॉडीज कॉरपोरेशन पंचायत पार्लियामेंट वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन हेक तो मैं विलेजर्स इंद्रे के कारण नॉन इंद्रे मैंने कैंपेन स्वच्छता ही सेवा है कैंपेन न तथप तर ने अलांगी सकाम इनफेक विनज्ञ अकमा महात्मा गांधी कहक इंद्रे आंगो वह न ट्राई डे न मिन कह अक यंग ही फादर ऑफ द नेशन लमक ते इनगम डिबुटी सौत अंडमान अंगी मिन कह तलोन ही हॉय तहंगरा ने जोग महावत करे नलक एल हॉय ने कुन पानम ही

0: अनंता को निहारा हे ही हांगने तवाय इनराम कलोन तिनकर कर
1: असा तनिंग दकुंगी सकाम रे तक ही ए हांगने तवाय इनराम कलोन तिनकर कर चुजिन होली एलिनिता महांगने तवाय इनराम कलोन तिनकर कर हॉय तैरुल तेन रेंगाच ए हांगने तवाय इनराम कलोन तिनकर कर निराने सिन हांग ही इनराम कलोन तिनकर कर नदिगक न्या लॉर्ड पीटर

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना

और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है, जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए, जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, गिल्ट की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज ये है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दे और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज

0: लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक चेतन को इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहार की शाम का। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम। संध्या 6:00 सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत गायों का पालन विषय पर श्रीमती पी पांडे अम्मा से की गई बातचीत। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:30। 6:45 पर सुनिए लेखक वी एस आनंद की लिखी झलकी वजन घटाओ। मौसम की जानकारी, जलयानों की यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाओं से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:30 जिसमें श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। तत्पश्चात आप सुनेंगे देश गान कार्यक्रम गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ये तो थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स, विषय रहेगा कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग में सावधानियां।

जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। सवेरे 6:15 पर सुनिए तमिल भक्ति गीत रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सवेरे 6:50 पर आपको अवगत करवाएंगे मौसम की जानकारी कार्यक्रमों के विवरण से। इंद्रधनुष कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:15, विषय रहेगा साथी। सवेरे 7:30 पर सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं की पहली कड़ी धुएं के उस पार। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30, फनकार होंगे रानू मुखर्जी राधा सलूजा। बाल जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित विश्व मोहन भट्ट का हिंदुस्तानी शैली में गिटार वादन। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सवेरे 10:00।

11 बजे सुनिए मेरी पसंद कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर राशिदा इकबाल। गजल कार्यक्रम का आनंद लीजिए दिन के 11:30 पर। बारह बजे तेलुगु कार्यक्रम, मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। दोपहर 1:10 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे अनवर, अशोक खोसला, सलमा आगा। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी। कार्यक्रमों के विवरण से आपको अवगत करवाएंगे 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा 5:00। 5:30 पर सुनिए बांग्ला कार्यक्रम। व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा संगीत संगिनी, समय रहेगा 6:00। 6:30 पर सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम GST एक देश एक कर। देशकान का आनंद लीजिए 6:45 पर। 7:15 पर आपको अवगत करवाएंगे मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना से। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30 जिसमें श्रोता सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। 8:00 सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम। रोजगार समाचार का समय रहेगा 8:30। तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और 10:00 रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय 4:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म बाजी से मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

0: कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। रविवार 4 अक्टूबर से प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों में कुछ फेर बदल किया गया है। अब हर रोज सुबह 6:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न भाषाओं के भक्ति गीत। सोमवार बांग्ला, मंगलवार तेलुगु, बुधवार मलयालम, बृहस्पतिवार बांग्ला, शुक्रवार तमिल, शनिवार निकोबारी तथा रविवार तमिल भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। इसके अलावा अब इंद्रधनुष कार्यक्रम सुबह 6:15 की बजाय सवेरे 7:15 पर प्रसारित होगा। रविवार सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक नई दिशाएं, और 7:45 पर सुनिए कुछ फिल्में गीत। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना।
1: निदा फाजली का लिखा हुआ, अनु मलिक का संगीत बधकिया, श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं बेकाबू फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

बीबी नंबर वन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोताओं बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से

बीबी नंबर वन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोताओं बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলোহার্টজ থেকে।

0: से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह कार्यक्रम का आगाज हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं, है ना साथियों? सही बात। और साथियों, जब हमारा जीवन, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, मछलियों के आहार में चावल के भूसे और खली का अनुपात क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। भाइयों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान साथियों, अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं पशुओं में पौष्टिक आहार की अहमियत के बारे में।
2: पशुओं के स्वस्थ विकास, उच्च उत्पादकता और बेहतर प्रजनन के लिए पौष्टिक एवं संतुलित आहार की अहमियत अत्यधिक होती है। पशु पोषण और पौष्टिक आहार का क्या महत्व है? साथियों, संतुलित और पौष्टिक आहार से गाय भैंसों की दुग्ध उत्पादन क्षमता और दूध में फैट तथा SNF की गुणवत्ता में सुधार होता है। सही पोषण मिलने से पशुओं की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे वे थनेला और खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रमणों और बीमारियों से बचे रहते हैं। पौष्टिक आहार खाने वाले पशुओं समय पर गर्भ धारण करते हैं और स्वस्थ बछड़ों को जन्म देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन से युक्त आहार पशुओं को आवश्यक ऊर्जा और शारीरिक अंगों की मरम्मत करने के लिए ताकत देता है। संतुलित पोषण आहार के मुख्य घटक जो इस प्रकार से है, पहला है हरा चारा। प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति के लिए जैसे बरसीम, ज्वार, मक्का। दूसरा है सूखा चारा, फाइबर और पाचन के लिए जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल। तीसरा है सांद्र आहार यानी दाना मिश्रण, ऊर्जा और प्रोटीन के लिए चोकर और अनाज। चौथा है खनिज मिश्रण और नमक, हड्डियों के विकास और उपापचय के लिए। पांचवा है स्वच्छ पानी, शरीर के क्रियाओं को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस किया जाता है कि यदि विभिन्न दानों, चोकर, खलियों, कृषि औद्योगिक सह उत्पादों, खनिज पदार्थों तथा विटामिनों की उपयुक्त अंश में मिलाकर पशुओं को उनके मुख्य आहार के साथ मिलाकर खिलाया जाए, खनिज पदार्थों तथा विटामिनों की उपयुक्त अंश में मिलाकर पशुओं को उनके मुख्य आहार के साथ मिलाकर खिलाया जाए तो पशुओं की पोषक तत्वों की आवश्यकता को भली भांति पूरा किया जा सकता है। मिश्रण जो पशुओं की आवश्यकता, जलवायु, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है को संतुलित मिश्रित पशु आहार कहते हैं। संतुलित मिश्रित पशु आहार चूरा, गोलियां, मुरमुरा, घनाकार आदि के रूप में होता है। अरहर, उड़द, मूंग, चना तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध दलहनी चूनी कृषि औद्योगिक सह उत्पाद शीरा, बबूल चूनी, इमली बीज पाउडर, आम की गुठली, विलायती बबूल की फली, टेपियोका का अपशिष्ट पदार्थ आदि। गुणवत्ता नियंत्रण, पशु आहार के

0: उत्पादन से पूर्व प्रत्येक खाद्य पदार्थ की प्रयोगशाला में भली भांति जांच की जाती है। पशु आहार की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सभी मिलावटी और संक्रमित खाद्य पदार्थों को पूरी तरीके से अस्वीकृत कर दिया जाता है। तैयार पशु आहार को भी बाजार में उतारने से पहले प्रयोगशाला में अत्यंत सावधानी से परीक्षण किया जाता है। यदि तैयार उत्पाद में कहीं से भी कोई कमी रह जाती है तो इसे दूर करने के लिए पुनः प्रसंस्कृत किया जाता है। साथियों, जिसका पशु अच्छी तरह से पोषित और श्रेष्ठ होता है उसके यहाँ दूध की धारा बढ़ती है। ऐसे उत्तम पशुपालन से किसान के घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। साथियों, अभी आपने पशुओं में पौष्टिक आहार की अहमियत के बारे में जानकारी हासिल की। साथियों, हमारे अधिकतर किसान साथी कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं वो भी इस ओर अग्रसर हैं, पशुपालन की ओर, बकरी पालन की ओर, मुर्गी पालन की ओर। बड़े आराम से वो इस व्यवसाय को चला रही हैं। गाय पालन कर हमारी ग्रामीण महिलाएं दुग्ध उत्पादन करती हैं। साथियों, दूध की अच्छी बिक्री हो जाए हमारी ग्रामीण बहनों को अच्छा फ़ायदा होता है। पिछले दिनों हमने सिपीघाट का दौरा किया था, उस दौरान हमारी मुलाकात श्रीमती पी पांडियम्मल के साथ हुई जो कि गाय पालती हैं। आइए उनके साथ की गई बातचीत हम आपको भी सुनवाते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं पशुपालक श्रीमती पी पांडियम्मा जी जो कि सिप्पीघाट की रहने वाली है। तो चलिए पी पांडियम्मा जी, आपका स्वागत है।
2: नमस्ते।
1: तो सबसे पहले पांडियम्मा जी, आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए।
2: बात बोलने से हम सुबह उठती है, मैं उठने से गाय बकरी है, बकरी बच्चा लोग भी है, लोगों को दूध पिलाना, पिला के फिर गाय लोग को बस जाएगी
1: जी,
2: सफाई करना, साफ सुथर करके दूध निकालेगी, दूध निकालने के बाद गंजी रखिएगी, गंजी आटा उटा दाना उना मिक्स करके को रखे, फिर बाद में थोड़ा देर के बाद में अपना काम बर्तन धोएगी, खाना उना बना के फिर 8-9 बजने के टाइम खोल के लेके जाके खेती में छोड़ के आएगी।
1: पांडियम्मा जी, आपके घर में कौन कौन है?
2: मेरा घर में मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा डेथ हो गया, मेरा बच्चा दोनों है, दोनों एक पढ़ते, अभी अभी गया चेन्नई गया।
1: और पांडियम्मा जी, इसके अलावा आप और क्या करती है?
2: और कुछ नहीं, मैं यही गाय बकरी चराती है मैम, और कुछ नहीं है मैडम, घर में घर का काम करती है
1: जी। आपके पास गाय भी है और बकरी भी है?
2: जी मैम।
1: आपने क्यों सोचा कि आप गाय ही पाले?
2: वही पहले से रहने, मेरा हस्बैंड रहने के टाइम से था मैडम, 10-15 गाय था, अभी तो उतना कोई नहीं, मेरा हस्बैंड मर के अभी 5 साल हो गया, मैं देखने को कोई उतना तकलीफ करने के नहीं सकती, इसलिए अभी 4-5 गाय लोग खाली है
1: अभी आपके पास। 4-5 गाय अभी है, उसकी देखरेख आप करती
2: हो? वही देखती है,
1: साथ में बकरी भी?
2: हाँ बकरी भी है, 1-3 बकरी है, मैं कभी देखभाल करने कोई मनता है ना, मैं मामा के लिए।
1: पांडियम्मा जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप पशुपालक हो, गाय पालती हो, तो घर पर जो गाय हम पालते हैं
2: जी,
1: उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसा स्वभाव का होता है?
2: बदमाश भी करती है, शांत भी है, कभी कभी धक्का दे के चले जाते, को सफाई करने में लात मार देते, कभी सिंग से मार देते, तकलीफ तो करना चाहिए ना
1: जी। नहीं, तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिना तकलीफ का हमें कुछ नहीं मिलता
2: है। तो अच्छे मैडम दाना पानी देता मैडम, जो जगह में देगा वही जगह में खा के बैठ जाएंगे, मैं उधर इधर नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छे ही है।
1: जैसे अभी आप अपने गाय को अपनी एरिया के अंदर ही बांधते हो?
2: नहीं, मैं अगल बगल लेके जाते, लेके जाके फिर शाम को जाके हम लोग लेके आ जाएंगे।
1: और गाय को कितनी बार आप दाना डालती है?
2: सुबह एक बार, शाम को एक बार डालेगी, मैं एक गढ़ाई भर के दे, कैसा भी है गाय को आधा किलो तक डालना, मैं खाली आटा नीमक ये सब डालना, मैं फिर ऊपर से नीम तेल, मक्की काटता करके नीम तेल लगाना, मैं एक दिन का कैसा भी 10 किलो आटा पकड़ ले।
1: आप कहाँ से लाते हो दाना?
2: हम दाना मुथू से दुकान से लेते, नहीं मिलेगा तो अंकल लेके आके देता मैडम, अनार गली बस्ती से लेके आके दे, एक बस्ता 3,000 करके दे,
1: एक बस्ता 3,000 करके,
2: 3,000 गली मक्का दाना लेके।
1: आप वही गाय को देती है?
2: जी।
1: तो इनकी कितनी मात्राएं आप कैसे देती हो?
2: एक दिन का सुबह एक टाइम का आधा किलो देता मैं।